0: पाउने सम्मान दुर्योधने दानम सूर्य सुते बलम फलधरे सतीं चकुंती सुते विज्ञानी विदुरे भवति भवतां सुतिश्च नारायणी जयंती मंगल काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वध स्वध नमस्ते।
1: टाइम चेक को साथ मा बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।
2: कहिले धरियाको सुस्केर बन्छ, कहिले गाइने दाईको मन दुख्ने कथा, कहिले दुःखमा कहिले सुखमा तपाईँ हाम्रै गाउँघर उकाली एनाले भन्जन चौतारी हुँदै गुन्जिन्छ वन पाखा
3: कार्यक्रम लोक भाका
2: मात्र रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज़ में।

0: यो चाड पर्व टीवीएस को साथमा भाग्यको चाबी तपाईको हातमा।
1: हरेक खरिदमा शीर्षक उपहार, क्यास डिस्काउन्ट अप टु 10 लाख वा गोल्ड की वा 100% क्यासब्याक अप टु 100% पर्चेस भ्यालु।
0: साथमा हरेक दिन दुई जनालाई 5 इयर्स फ्री सर्भिस।
1: फटाफट फाइनेन्स सुविधा, नागदी तारा लाइसेन्स भए पुग्छ।
0: टीभीएस दुलेगौंदा
1: सम्पर्क लालचन अर्गनाइजेसनद्वारा सञ्चालित एन्जल्स राइडर्स प्राली, टीभीएस सोरुम दुलेगौंडा, प्रोपाइटर बसन्त लालचन, 9855309282 र 9705620209।
2: ल न हो छिटो निस्क अहिले फर्क।

आयुद्रो न सुते श्रियम दशरथे शत्रु क्षयम राघवे ऐश्वर्य दहुसे गतिश्च पावने सम्मान दुर्योधने दानम सूर्य सुते बलम हलधरे सतीं च कुंती सुते विज्ञाने विदुरे भवति भवतां सुतिश्च नारायणे जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्व

कोई का अपना बीते होलन कोई का पर भय आउने जाने चली रंचा भन्दे मन बुझाए कोई छन आर्मी पुलिस समा ड्यूटी गर्दै होलान हाकिम।

0: अजिराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301
1: कैमराज स्टैंड बाय रीलोड म्यूजिक
2: नेपाली चलचित्रका गीत संगीतहरू

0: भट्टाचार्य दुलेगौड़ा। नोट, साधारण सभामा सहभागी हुने शेर सदस्यलाई यातायात खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अनुरोध, उन्नति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, शुक्ला गण्डकी चार, दुलेगौड़ा, तनहुँ।
1: बड़ा दशैं र शुभ दीपावलीको अवसर पारी चण्डिकालिका मगर समाज बलाम्बी प्रस्तुत गर्दछ शुद्ध गाउँ तथा साविक वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2083।
2: यही कार्तिक 6 गतेदेखि 12 गतेसम्म हरिनाश गाउँपालिका 3 बलाम्दी खेल मैदानमा उपस्थित भइदिनु हुन खेलाड़ी र सम्पूर्ण खेल प्रेमी महानुभावहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं।
1: मुख्य प्रायोजक हरिनाश गाउँपालिकाको कार्यालय,
2: आयोजक चण्डिकालिका मगर समाज बलाम्दी स्याङ्जा।
1: प्रथम पुरस्कार रु 50,000,
2: द्वितीय पुरस्कार रु 30,000,
1: तृतीय पुरस्कार रु 15,000,
2: सान्तोना पुरस्कार रु 10,000,
1: साथमा सिल्ड मेडल र प्रमाण पत्र।
2: विधागत तर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाड़ी, उत्कृष्ट डिफेन्डर, उत्कृष्ट ब्लकर, बेस्ट स्पाइकर र बेस्ट सेटरलाई आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।
1: टिम दर्ता शुल्क रु 5,000,
2: टिम दर्ता गर्न सकिने समय यही कार्तिक 4 गतेसम्म,
1: खेल शुरू हुने मिति यही कार्तिक 6 गतेदेखि।
2: विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क खेल संयोजक अशोक राणा 98495 87 751, 98261 52 827 र 98065 86 659। टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301।
3: हिजो जस्तो आज छैन, आज जस्तो भोलि रहने छैन, समय गतिशील छ, जब समय बोल्न थाल्छ संसार सुन्न थाल्छ। यो हो थाहा संचार नेटवर्क, समयको आवाज, समयको

0: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज।
1: स्टुडियो टाइमचेक
2: अहिले दिउँसोको 4 बज्यो।
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।

0: dinleyin maça.
1: इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भण्डारी चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरामा।
2: इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भण्डारी आइतबारदेखि शुक्रबार सम्म साँझ 5 बजे पछि अथवा आवश्यकता अनुसार यस चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरामा आउनु हुने भएकोले समयमै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला।
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301।
1: इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भण्डारी चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरामा।
2: इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भण्डारी आइतबारदेखि शुक्रबार सम्म साँझ 5 बजे पछि अथवा आवश्यकता अनुसार यस चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरामा आउनु हुने भएकोले समयमै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला।
1: उपचार सेवाहरू
2: भेरिकोस भेनको लेजर उपचार खुट्टाका सुन्निएका तथा फुलेका नसाहरूलाई लेजर प्रविधिबाट बिना ठूलो चिरफार उपचार गर्ने विधि
1: अल्ट्रासाउन्ड तथा सिटी गाइडेड बायोप्सी प्रक्रिया मासुको टिस्यू नमुना लिएर रोग जस्तै ट्युमर पत्ता लगाउने प्रक्रिया
2: रक्तनाली सम्बन्धी रोगहरूको उपचार एन्जियोप्लास्टी स्टन्ट राख्ने प्रक्रिया आवश्यकता अनुसार यस चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरामा आउनु हुने भएकोले समयमै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला।
1: उपचार सेवाहरू
2: भेरिकोस भेनको लेजर

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टुडियो साइड
2: अहिले बिहानको 5 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प स्टोर अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301